कि आप जी महाराज की हजूरी में जुड़ बैठे हो, समूह साध संगत आप जी नूं बेनती है कि आप जी एकाग्रता बख्शो अते जो लड़के दे दस्तार ते सेहरा सजिया है उस नूं वधा के महाराज के चरणों में रखण की कृपालता करो ता जो आप आनंद कारज की जो मर्यादा है उसनों आरंभ कर सकीए। नाल बेनती है कि बच्ची नूं भी महाराज की हजूरी में ल्याण दी आप जी ने कृपालता।

0: तुमरी सरन तुमारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो हो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: संगत जी, बेनती करांगे बच्ची दे पिता जी नूं कि वह आ के बच्ची नूं वर दा पल्ला पकड़ावन, दासरे शब्द गायन करनगे जी। पल्ला पकड़ाओ जी, दासरे शब्द गायन कर।

पंछियन में हंस, मृगराजन में शार्दूल, रागन में श्री राग पारस पखान है, ज्ञानन में ज्ञान अर ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में है गृहस्थ प्रधान है, सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साह, जिस पास बैठिया सोही है सब ना दा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: सतगुर नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी
1: सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ
0: काल कलेश तन माए मिटाओ
1: सिमरो जास बसम भरेक
0: नाम जप दया गणत अनेक
1: वेद प्राण सिमरत सो ताकर
0: कीने राम नाम एक आखर।

0: आप सिमराए,
1: नानक तांके लागो पाए,
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा,
1: प्रभ के सिमरन उतरे मूचा,
0: प्रभ के सिमरन तृष्णा बूझे,
1: प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे,
0: प्रभ के सिमरन जाय तप रत प्रसा,
1: प्रभ के सिमरन

0: सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभ के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभ के सिमरन निश्चल आसन,
1: प्रभ के सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभ सिमरन काय अंत न पार,
0: से जन क्यों प्रभ मेया,
1: नानक तिन जन सरनी पाया,
0: हर सिमरन कर

0: काल सकी जय।
1: प्रसाद हस्त असवारी
0: मानते से प्रभु को कबु ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलख तना
0: राख परोए प्रभु अपने मना।
1: तेरी मन बनत बनाई
0: उठ द बैठ साथी से त्याई।
1: से त्याई जो एक अलख है
0: यहाँ हुआ नानक तेरी रख है।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान
0: माने आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को सा साच धारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा नूप।
1: जय प्रसाद तेरी निकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है
0: गौर प्रसाद नानक जस कहे।
1: जय प्रसाद सुने करनाद
0: जय प्रसाद पे के विस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
2: जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
1: जय प्रसाद हस्त कर चले
0: जय प्रसाद संपूर्ण पले।
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख से समावे।
1: ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो
0: गौर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार
0: तिस प्रभु को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूर्तता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे।

0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम नतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन परानी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फूले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग कतु न तावे
1: साध संग अस्तित मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग किसी जिन्यू बैर
1: साध के संग न बीगा पैर
0: साध के संग

0: संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कुछ काल
1: दर्शन पेटत होत निहाल
0: साध के संग कलुगत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इया उआ सहिला
1: साध संग बिछरत हरे।

0: चिंत
1: निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जे करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश

0: मन में प्रीत निरंजन दर्श मन की वासना मनते तरे
1: जित पंच दोखते रहत
0: नाने कोट मदे को ऐसा प्रस बिसन की माया तिस बैसनो का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग्राच सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो बैसनो परम गत पावे
2: सगल के आगे दोस्त का संग
1: मानते बिन से सगला पर

0: जाकर दृष्ट कछु न आवे, जाको अपने करे बख्शीस,
1: जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास, अपने बनत आप बनाई,
1: नानक जीवे देख बढ़ाई,
0: इसका बल नहीं इस हाथ,
1: करत रावण सर को नाथ,
0: आज्ञाकारी बपरा जियो,
1: जो तुझ पावे सोई उन्तियो,
0: कबू ऊंच नीच में बसे,
1: कबू सो हर ग्रह से,
0: कबू निंद चिंद व्यवहार,
1: कबू ऊंच आकाश पे हाल,
0: कबू बेत ब्रह्म विचार,
1: नानक आ मिला मनहार,
0: कबू नृत्य करे कबू प्यात,
1: कबू सोए रहे दिन रात,
0: कबू महाक्रोध विकराल,
1: कबू सर्प की हो तरवाल,
0: कबू होए बहे बड़ राजा, कबू अपकीर्त में आवे,
1: कबू भला भला का आवे,
0: जो प्रभु राखे तिवें ही रहे,
1: गुरु प्रसाद सच रहे,
0: कबू होए पंडित करे बख्यान,
1: कबू मोंतारी लावे ध्यान,
0: कबू तट तीर्थ स्नान,
1: कबू सिद्ध साधक मोह ज्ञान,
0: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया,
1: अनेक जोन पर में परमिया,
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे,
1: जो पावे तिन्हे नचावे,
0: जो तिस पावे सोई होए,
1: नानक दूजा होर न कोए,
0: कबू साध संगत ए पावे,
1: उस स्थान ते बोर न आवे,
0: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
1: उस स्थान

0: चले जिसके अंदर राज अभिमान जो जाने में जो वन बंत
1: का जनता
0: आपस को कर्म बंत कहावे।

0: सुते खुआई
1: गुर प्रसाद जाका मिटाय अभिमान
0: सोजा नानक दरगे परवान
1: बोड कर्म करे हो तारे
0: शरण पाए सगले बिन सारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिरे अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगे को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: तुझे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जाका मन होए
0: ओ नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कुछ होए
0: तब इसको सुख नहीं होए
1: जब है जाने में कुछ करता
0: तब लग गर्म

0: छूटे
1: सहस घटे लाखो उठतावे
0: तृप्त नावे माया पाछे पावे
1: नक भोग विख्या के करे
0: नहीं ते पावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोर समेत सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख

0: मन अपने माहे
1: नानक कीमत न कहा न जाए।
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुरु प्रसाद के बखियानी
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट मदे किन मेरे चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
2: काट कर सुनी चरमन
0: पवित्र पवित्र पवित्र।

0: संगे दुखन जंदे नी छूटे संगे दुखन नरक में पाए संत के दुखन सो बादे हीन
1: संत के दुखन थान प्रश्न होए नानक संसंग निंदक पीतर है संत के दुखन काग जोलवे संत के दुखन त्रिग
0: जोन कर माए
2: दुखन सरब जोन पाए
1: त्रिगत जोन कर माए
2: संत के दुखन ते मुग पवे संतन के दुखन सरब जोन पाए संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को चले
2: संत के दुखन से सब जाए
1: संत के दुखन नीच निचाए
2: संतों की कथाओं को नाहे
1: नानक संत पावे तो होए पीगत पाए
2: संत का निंदक महात ताई
1: संत का निंदक खिंटी करना पाई
2: संत का निंदक महात्यारा
1: संत का निंदक परमे

0: की जड़ किछ ना है,
1: अपनी जे आप ही खाए।
0: संत के दुखी को अब न राखन हार,
1: नानक संत पावे तले उबार।
0: संत का दुखी ओम बिल्लाए।

0: धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद नित आखत
0: गिरत निंदक का तुरी पया
1: नानक ज्योति से पावे सोई दिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होय जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइया
1: संत का दुखी न मरे न जीवाइया
0: संत के दुखी की पूजे न असा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न तिष्ठे कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मेटे को
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब घर तिसके ओ करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रब की उस्तद करो दिन रात
1: तिसे त्यावो सांस के रात
0: सब किछ वर्ता तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेल आप करने हार
1: दूसर

0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिघन न लागे कोए
0: उस्तत मन में कर निरंकार
1: मन में मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सुहेला कल जियो
0: नैनो पेखठा गुर का रंग
1: साल संग बिन से सब संग
0: चरण चलो मार गोबिंद
1: हर
0: हर कर्म सर्वण हर कथा
1: हर दर्गे नानक उज्जल मथा।

0: के तारे पूरिया सब पवन
1: नाम के संग उजरे सुन सरवण
0: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: सरक सत केवल प्रधान
0: दूत सत सत जाकी वाणी
1: सत पुरख समाए समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बुझे जे कोए
1: नाम जपत ता की कत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मत गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सुकर ने हार
1: आवर न बूझ करत।

0: रखे
1: ताकि गत में कोई न लाके
0: सेवकों को न पहुँचे
1: प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दिस प्रगटाया
0: गिरी में कर रखे
1: पसम करे लश्कर को

0: सेवा को गुर सदा दयाल
1: गुर धर्मात्मा लीरे
2: गुर वचन नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
2: गुर का सिख विकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम तन दे
2: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारे
2: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: जैसे गुर जो रहे
2: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आपस को कर कछ न

मन में रखे हर हर एक नानक पर मोह दुख तै ते नासे नंद पिया दुख नाठे पाई।

मन भिक्षे साचरन तोये बिरला को पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लिया नानक रहा सर्व समाए भगत बचन सदा कृपाल सर्व कटा कारत प्रतिपाल भगत जना के प्राण आधार भगत पाए लावे मन हीत नानक तुमरी शरण पुरख भगवान एक निम करके गुण गाए हर के नाम की कथा मन पाई रसना जपती हर हर नीत हृदय बसे।

0: सर्वद मुक्त को किसको गनी
1: जब के हर गम पार
0: तब नरक स्वरूप को कौन पार
1: जब निर्गुण प्रभु सहसवाए
0: तब शिव शक्त को कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत तरह
0: तब कवन निडर कवन कत डरे।

0: शोभा आपन संग बनाई।
1: राम कवन माए बाप मित्र सुत पाई।
0: जय सर्व कला आपे परवीन,
1: वेद देव कहां को चीन।
0: जाने आपन आप उतार
1: शगन पशगन का।

0: आप कहते आप सुने
1: देखिया
0: एक आप विस्तार अपने बाणी नहीं समाए
1: नहीं कुछ होए अपने सु सब जगत पर होए
0: सच
1: बोलो भी की
2: तत का बेटा
0: नानक सगल श्रेष्ठ।

नाम मंगणाए संगति गुरु बख्शिश करन। सत्कारयोग मातावां भैणां बड़े प्यार दे नाल पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी का जाप उन्होंने किया है। जिवें मैं पहला भी बेनती की सी कि सत्कारयोग मातावां भैणां श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ बड़े दिल नाल करदियां ने। कोई भी समा बने तो भैणां ने कतर हो के सतगुरु जी की पावन बाणी ये वडमुली बाणी है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, अमृत प्रभु का नाम, उस नाम की महिमा इस बाणी में है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विसराम। ये बाणी पढ़ते हैं भावें वो शहीदियां दे शहीदी दे जाड़े होण, गुरु अर्जन पिता महाराज जी दे, ते चाली चाली दिन लगातार भैणां मातावां ने सुखमनी साहिब जी का जाप करना है। ये इन्हां दे हिस्से आउंदा। सतगुरु जी इस तरह बख्शिश बनाई रखन, इस तरह ये मातावां भैणां मेरिया मावां मेरिया भैणां बाणी नाल इस तरह जुड़न ते होरनां नूं भी जोड़न। बड़े श्रद्धा प्यार नाल बाणी ये गायन करदे पढ़दे हन। ते आपां मंग भी यही रखिए, दाता तू कृपा कर साड़ी झोली विच नाम दी खैर पा दे, बाणी दी खैर पा दे, कीर्तन दी दात पा दे। संसारिक मंगा ते चलदियां रहिंदियां। इस करके संगत जी सतगुरु जी का शब्द है, जाचक नाम जाचे जाचे सर्व धार सर्व कै नायक सुख समूह के दाते। सतगुरु जी कृपा करन। मैं बेनती कर दवा के तकरीबन 1 मार्च तो आप संगतां दे दर्शन प्राप्त होए दासरियां नूं। दास धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज, धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी दे दर ते सेवादार हन, कीर्तन द्वारा सेवा दास नूं प्राप्त हुई है। ते आप संगतां दे इत्थे दर्शन होए ते परसों दासरियां ने वापस चले जाना है। कीर्तन करदियां तो आप जी दे नाल विचरदियां तो कई तरह दियां भुल्लां हो जांदियां हन। संगत बख्शनहार है, सतगुरु जी बख्शनहार ने, आप जी ने असीस बख्शनी कि दाता इसे तरह कीर्तन दे नाल सानू जोड़ के रखन। कीर्तन दिलों गायन करिए, सतगुरु जी का शब्द दिलों गायन करिए, ये आप जी ने अरदास करनी है। तो संगत जी फिर कदे समा बनिया तो आप संगतां दे जोड़े झाड़ांगे। ते ऐतकी इतनी हाजरी दासरियां दी इस फेरे दी परवान आप जी ने कर लेनी। आप जी का बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद है, जो आप जी ने बड़ा प्यार बख्शिया, माण बख्शिया, प्रबंधक भई वीरां दा, मैनेजमेंट कमेटी दा और स्टाफ का सब का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत नवाजिया है, प्यार बख्शिया है। तो संगत जी आओ ये सतगुरु जी दी पावन बाणी दी तुकां पढ़िए। तो आप जी ने असीस बख्शनी, अरदास करनी दास दे जथे लई कि सतगुरु जी इसे तरह अपना रहमत प्रयास रख के सेवा कीर्तन दी लैंदे रहन। तो आओ पढ़ो।

कि जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट जग गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले उबारे कभी ओ बाच बेनती चौपई

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहि अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहि तर सब हूँ। जीते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।

गौड़ मल्हार कई रूप ने मल्हार दे, ये सुर मल्हार है। तो बरसा ऋतु दे विच मल्हार गाई जाती है। अज बरसात दियां कणियां जो देखियां तो मन होया कि मल्हार गाइए। मेघ मल्हार भी है पर यह सुर मल्हार है।

संगत जी एक शब्द आप सारे रल के पढ़िए चंद मिनट बच्च। सतगुरु जी कृपा करन जिस हिरदे दे विच उस मालक दा नाम वस जाए उदियां सब आसावां पूरियां होंदियां हन।

दीनन की प्रतपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारे, पाच पशु नगनाग निराधप, सर्व समय सबको प्रतपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निद, दोखन देखत है पर दीत ना हारे, दीन दयाल दया निद, दोखन देखत है पर दीत ना हारे, सो कहो टल गुर सेवी एहनी सुसह सुभाय, दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों जटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है, सा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनाश्री

सगली जमडाने हर का नाम जप दुख जाए चार पदार्थ जे को मांगे जे को अपना दुख मिटावे जे को अपनी सो बालो रे जे को जन्म मरण ते डरे जिस जन को प्रभु दास प्यासा सगल पुरख में पुरख प्रधान आप उसको जो जाने नीचा जागा मन हो सगल की रीना मन अपने जे बुरा मिटाना।

0: जाके मन लागा प्रभ मीठा जिस जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व दुख नानक तिन पाया
0: अगनत साहु अपनी दे राज
1: पाद पीर पर ते नंद उल्लास
0: अपनी अमान कछ बोर साहु ले
1: ज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी बसत तिस आगे राखे
1: प्रभ की आज्ञा माने माते
0: उसते चोगन करे निहार
1: नानक सदा दयाल
0: अनेक पात माया के हेत
1: सर्व रोग जान नेत
0: बिरक की छाया सिर रंग लावे
1: ओ वैसे ओ मन प्रसावे
0: जो दिसे सो

0: सासंगल सगली गोद सार्ग संपर्दे सुज्ञान सासंग सहोत निवेया सार्ग संग उपर जतन नान साकी सुपा ब्रह्माय समानी सार्ग संग सदा पर फुले सासंग अमरदस पुंचा साधु संग मनोर बैन सासंग सब मन पावे सासंग नाम प्रभु सब प्रसन्न साधु के संग नाम नित साधु के संग बिगा पैर सासंग जाने पर मानंदा साधु के संग तजे जवाब नानक साध प्रभु बने आई साध के संग सदा सुख पावे साध के संग अजर सह साध के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
2: नानक साधु के गुरुवान
1: साध संग सह जन्मित कुटुंब निस्तार है
0: जिसा दे सब को बरसावे साध के संग सो पासुर देवा साध संग अमृत गुण गायन नान साध के संग सब सुन नाम दर्शन पेट रोध निहाल साध के संग नरक पर हर साध संग चित्र मेला साध के संग विता जावे

0: जेता सुनया देता वख्याने साधु मारे भरपूर साधु की शोभा सदा व्यंत
1: साधु की शोभा।

0: कोट किए धनवाद जय जय पाना दे दे राखे
1: सब कुछ प्रभु के हाथे
0: कोट पै बैरागी
1: नाम संत लागी
0: कई कोट प्रभु को खोजनते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: प्रभु नास
0: कई कोट कई कोट मांगे सत्संग जिनको आप सो प्रसन्न कई कोट खानी हर खंड कई कोट होए अवतार कई बार पसरे पसार।

0: काल दे दुस प्रगटावे सकल घन घन जगदीश
1: सब
0: तिसकी रास प्रगट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश ज्ञान जीव देख पुराई तन ग्राम सर्वनाथ जोस पावे सोई बंदियो प्रभु सो गार गुरु से कबू प्रकाश बिहार

0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नारद पाति यो स्वान
0: जो जाने में जो बनवंत
1: सो विद्या का जानत
0: आप उसको कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे वो जोन पर मावे
0: जो करे गुमान
1: सो मूल गंदा ज्ञान
0: हर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक की अमुगदा के सुख पावे
0: तनवंता होए कर गरबावे
1: तिन मान का संग न जावे
0: वो लश्कर मन को ऊपर करे आस
1: बल पीतरता का होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: इन में होए जाए बसमांत
0: इसे न बदे आप हंकार
1: धर्म राय जिस करे कुआरी
0: गुरु प्रसाद जाका मीठे अभिमान
1: सो नानक करके परवान
0: कर्म करे हो तारे
1: कर्म पावे सगले विस्तारे
0: अनेक तपस्या करे हंकार
2: अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं दिरवे
1: अधगे को कैसे गवे
0: आपस को जो पला कहावे
1: जे पलाई निकना आवे
0: सर्व की रेंज जाका मन होए
1: और नानक कागे निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कुछ होए
1: तब इसको सुख नहीं कोए
0: जब ए जाने मैं किच करता
1: तब लगर जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: लग न चनाई चीत
0: जब लग मो मगन संग माए
1: तब इसको
2: सुजाए
0: रब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक को छूटे
0: सहस कटे लक को ओठ थावे
1: नावे माया पाछे पावे
0: अनेक पोग भिक्षा के करे
1: नहीं जब तावे कब कब मरे
0: बिना संतोक नहीं को राज
1: सुपन मनोर प्रीति सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: भागी किसे प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक जाप
0: करन करावन करने हा
1: इसके आका विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप रस होए
0: जो किच कीनो सो

0: उपदेशे समझे आप
1: रचिया सबके साथ
0: आप किनो अपन विस्तार
2: सब कुछ उसका ऊपर निहार
0: उसते पिन कहो कि चुको
1: तांद नंदरे क्या सोए
0: अपने चलता आपे करने हार
2: आप तो करे रंग पार
0: वाहिगुरु अपने चरित्र आप करने हार
1: बहुत करे रंग पार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक की मत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुरु प्रसाद की ने वज्ञानी
0: सच सच सच सब की ना
1: ओट में देगे ने बिल ले जीना
0: लाप लाप ला तेरा रूप
1: अत सुंदर पार रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
2: कर सुने जन रुकियानी

जिसका मन न जाने हो सब दुख सुनी करता के चकनाथ विसर्ग समय भोगी नानक तिस प्रकार के नांत न पाया सकल देवार गाए सकल कोई अपने सुत जिन दास नाम के आवे से जन्म

जब जब जीवे नानक नाम नाम के तारे कण ब्रह्मांड नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे सगल द्वार नाम के संग उतरे सत्सरवण नानक चौथे पद में सो जनगत पाए पुरख सत केवल प्रधान सतपुरख समाए समाणी मूल सत सत उत्पत्त जिसे बुझाए जिसे सब

0: को देव डाई
1: सेवक नाम जुखाई
0: आपने सेवक की आपत रख है
1: आपके
0: सेवक ऊंचे ऊंचा आपके सेवक को कोई न पहुंचे
1: आपके सेवक ऊंचे ऊंचे
0: जो प्रभा अपनी सेवा लाया निकी कीरी में कल रख है जिसका शासन का डताब मानस जतन करत बपात मारे न रखे अवर न कोई सोच करे रे प्राण।

आठ पैर पर बसे हजूरे मन मेरे दिन की ओट ले जिन जन अपना प्रभु पछाता इसकी शरण सर्व सुख पावे अवर सयानम सगली।

0: सेवको गुरुसदा दयाल
1: गुरबचनिया नाम उचरे गुरु का सिख बिगाड़ते हाटे गुरु का सिख पटभागिए नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे गुरु की आज्ञा मन में सह हरा नाम रस ध्यावे

0: जाचक जन जाचे प्रदान
1: कर कृपा देवो अरनाम
0: साजना की मांगो तू
1: सदा
0: सदा प्रभु के गुण गावो चरण कमल सिओ लागे प्रिय
1: करो प्रभु की नित
0: एक ओट एक आधार
1: नानक मांगे ना प्रभु सार
0: प्रभु की उस्तत प्रभु की दृष्टि मा सुख होए
1: आरस पावे बिल्ला कोए
0: जिन चाखे से जंत्र त्राने सुबर परे प्रेम रस रंग परे शरण आन सत्या बड़पागी जपया प्रभु सोए
1: नानक नाम हृदय सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई जन को प्रभु होए दयाल बंधन काट मुक्त जन पया इच्छपुनी सरदा सब पूरी इसका साथ इन लिया मिलाए सो क्यों बिसरिजे काल न पाने सो क्यों बिसरिजे सब पिछ दिया सो क्यों बिसरिजे अगन में राखे सो क्यों बिसरिजे बिकते काटे गुरपुरे तत एह बुझाया साजन संत करो हे काम सिमर सिमर सिमर सुख पावो भगत पाए पर तरिए संसार सर्व कल्याण सुख निध नाम सगल दुख का होवत नाश उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ नेत्रों पे दरस सुख होए भगत जना के मंत्र राम एक बस दीजे कर मया ताकि उपमा कही न जाए प्रभ बक्सन दीन दया नाथ नाथ गोविंद गोपाल आज पूरक कारण करता जो जो जपे से होए पुनी हम निर्विनियार नीच जान सर्व पैकुंठ मुक्त मोक पाए अनेक राज भोगोड़े आई भव भोजन का प्रसंगी फलि सुकन्नी शोभा तन्वंत।

0: सदी
1: संत संग अंत प्रभ डीठा
0: नाम प्रभु का लगा मीठा
1: सगल सामग्री एकज घट माहे
0: अनिग्रंगानंद पुष्टाए
1: नौनित अमृत प्रभ का नाम
0: रही मैं का विश्राम
1: सुन समाद अनहत तहना
0: रहना जाए चज विस्माद
1: तुम देखिया जिस आप दिखाए
0: नानक दे जन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: कर व्याप व्याप भगवान तो
1: करन माहे आकाश प्यार
0: लोगुन प्रतपाल
1: बंतन पर्वत है पार
0: जैसिया के फैसा करमू
1: पौन पानी बैसंतर माहे
0: चार कुंडा दो से समाए
1: किस्ते पे नहीं कोठाओ
0: गुरजा नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण समृत मह देख
0: ससिय सूर नक्षत्र में एक
1: पानी प्रभ की सबको बोला
0: आवड़ो नक बुडोला
1: सर्व कला कर खेला खे
0: सर्व
1: ज्योत मह जाकी ज्योत
0: स्वामी अद्भुत
1: प्रसाद परम का नाश
0: दिन मिलाए विश्वास
1: संचना का पेखन सब ब्रह्म
0: सब ब्रह्म
1: संत जना सुने सुबचन
0: व्यापी राम संरचना
1: जिन जाता तिसकी ये रहस्य
0: साधु सब कहते
1: जो जो होए सोई सुख माने अंतर बसे बाहर भी योही आप सत किया सब सत तिस पावे ता करे
0: विस्तार
1: अनेक कला लखी न जाए
0: मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर
0: प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए सर्व भूत आप वर्तारा सगल सामग्री जाका तना आवन जाने खेल बनाया सबके मत अल्पतो रहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए इसते हुए सुना ही बुरा आप लाकर तूत अतनी की आप साज तारी सब साज ताकि गतमित कहीं न जाए इसका किया सब परवान जो जाने ते सदा सुख होए तनवंत कुलवंत पतवंत तन तन तन जन आया जन आवन का यह सुहाओ
0: आप नानक जन को सदा

0: प्रदान प्रकृति
1: उज पाय स्थान
0: भक्तन
1: काटलजन सोए
0: जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांतृत नवनीत
0: ज्ञान सरप्त सिद्ध
1: विद्या तप जो प्रभु ध्यान चार बरात कमल प्रकाश
0: सुंदर
1: चतुर तत् कविता हे बाल जन कै मुख बने।

0: रामकली की बार राय बलवान तथा सत्य डुमाकी एक ओहंकार सदगुर प्रसाद नौकर्ता का आदर करे क्यों बोल हो वह जो की उदय चलाया सच कोट स्थानी नीव
1: दयागुर
0: आत्म देव दी खड़ जोर प्रा कोई जी
1: दी नान सलावती
2: लेने दी फेरा ये नानका दोही खट्टी है
1: छत्र
2: निरंजनी मल तख्त बैठा गुर
1: हटियार
2: चले गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी
1: है
2: कसम दी नूर अरसो गुरसो चट्टी
1: है
2: सचे गुर फरमाया क्यों एदु बोलो हटी
1: है छोटे
2: की फिरन पन बार बन पार उचारन छटी है
1: जिना की सोई करे जिन की ती दिने थटी है
2: कौन हारे किन वटी है
1: जिनकी तिसो मंदना सो साल जुआए साली
0: धर्मराय देवता ले गला करे दलाली
1: सतगुरु आखे सच्चा करे सा बात होए दराली
0: गुरंगदी दोई फिरी सच करते बंद बहाली
1: नानक आया पलट कर मल तख्त बैठा सा डाली
0: कर सेवे मत कड़ी मस्कल है होए जगाली
1: दर्श दरवेश कसम ते ना सच्चे बाणी लाली
0: बलवांड की भी नेक जन जिस बहुती जो पतराली
1: लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर की आली
0: बस सागे मुख उचले मन मुक्ति ए पराली
1: ऐ कबूल कसम नाल जा काल मर्दी
0: माता की भी सोए सोए जिन गोए उठाली माता की भी सोए सोए जिन गोए उठाली
1: ओरियों कांग
0: बहाई है दुनियाई आके के क्यों
1: नरतन का ल्यान कराओ गौन चल
0: क्यों
1: ना
0: कुदरत है बेखा ल्यान जिन एवड पिटिठन क्यों ना
1: नहीं तरह हूं चत्र सी
2: रसान की आड़ा छे क्यों
0: जोत मानी जोत माया वापे से दी में क्यों ना
1: सिखा उतरा को कह सब मत में खोजे क्यों
0: जास दोस्त लेना टिक्योन जास दोस्त लेना टिक्योन
1: फिर वसाया फिर वन सतगुर का डूर
2: जब तक संजन ना तो धोर मुझ गुरूर
1: लब गाने मान सकते हो बाणी पूर
0: बरे दर के गुरु की

वाहेगुरु जी। संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत सांत उपजै दुर्त दुरंतर नासै, सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै, सन संत संतोख सील सनाहो मुफुटै, सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै, संजम सत संतोख सील सनाहो मुफुटै, सतगुर प्राण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो, गुरु रामदास कल उचरै तै अभय अमर पद पायो, सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर।

जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिल्यो पुरख पेट्यो।

जगत उदाहरण नव निधान भगतै पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखै निवारण सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए तंते जनवड पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलयुच।

0: रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो।
1: वाहिगुरु जी सेज सदा सहज शावान संतोख सराचरियो सदा सील सनाहो सोहै गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगात बो है अजोनियो फल

कथ कथा अमरापुरी जिस देसो पावै ए जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवै।

0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुर एक त्यान
1: जे को कह करे विचार करते कह करने ना इस्मार
0: तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या दिन सूत
1: जे को बुझे सचार तबले ऊपर के तबार
0: धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर
1: जी जात रंगा के ना सबना लिखिया मुरी कला
0: एहु लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया कीता होए
1: कीता
0: पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ
1: कुदरत कम का विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तुत पावे साई पलिकार तू सदा सलाम निरंकार
1: असंग जाप असंग पाओ असंग पूजा असंग तपताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: भगत गुण ज्ञान विचार संग सती असंग
0: संख सूर मोह पाक सार संख मोल लिव लाए तार
1: कम का विचार वारे न जावे एक बार
0: जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध गोर संख चोर हरम कोल
0: असंख अमर कर जाहि जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो
1: असंख
0: अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजो

0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश
1: लोय लोय पंडार जो किस पाय से कवा
0: कर कर विखे सृजनहार नानक

0: ज्ञान दान नमो मान मान
1: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत जंत्र
1: नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सचिदानंद सर्वं परनासी
1: अनुपे रूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सचिदा बुद्ध दा बुद्ध।

0: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
0: सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
2: सर्वत्र
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: सर्वत्र

0: अजात है अजाद है
1: जय प्रशांत प्रसाद
0: सर्वघंता सर्वघंता
1: सर्वख्याता सर्वज्ञाता
0: सर्वघता सर्वकर्ता
1: सर्वं प्राणिं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं तमं
2: सर्वं
0: सावल चंद प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाश।

0: गर्भ से प्रकाश सकल काल का किया तमाशा।
1: जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दैत्य जचन उपजायो।
0: आद अंत के तारा सोई गुरु संजो हमारा।
1: नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजाजन आप सवारी।
0: सुख दियो सतरंग को पल मोहबत कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछाणत।
0: चीती दे कुंचरा सोला सपा कृपा जिस कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।
1: जब कर करा कर तारा पजा तर दब दे अपारा।
0: जब आ कर तू मैं मिलत दे तर सब।
1: जेते बदन से सब तारा।

0: करियम पर जगमाता ग्रंथ कला पूर्ण सुब्राता
1: सकल देह को हरता जस जोखिम को शकर
0: श्री असुचप पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला अनल सुनय गुंग जो आस रस ना पावे सुनय मूचित लाय चतुरता आवे
1: के रह हो जो या के एक बार चोपे।

0: मन लगाए हो असमाओ
1: जब से ती मन मिलिया सचे लाया पाओ
0: आपे हीरा रतन है आपे जिसनु दे बुझाए
1: ऐ नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
0: सिव सख्त आप उपाय कह करता आपे हुकुम वरताए
1: हुकुम वरताए आवे कह गुरु किसे बुझाए
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त सब मन वसाए
1: हुकुम जिसनु आप करे से होवे एक स्यों लिवलाए
0: कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए।

0: जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान
1: जाका किया सब किछ होए तिससे बाहर नाही कोए
0: बहु विनंती अपने सतगुर पाए कास्त मारे दे निभाए रहाओ
1: सब ते ऊ जाका दरबार सगल भगत जाका नाम धार
0: सर्व व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कटकट बनी
1: जिस सिमरत दुख डेरा डहे जिस सिमरत यम कुछ ना कहे
0: जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत

0: सिमरा नंद कर नानक प्रभु पूर्ण पैज लिखाए।
1: बिलावल महला पंजमा ताती वो न लग गई पार ब्रह्म शरणाए।
0: चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई
1: सतगुर पूरा।

मात पिता हम बारिकते तुमरी कृपा में, कोई न जाने तुमरा सगल समग्री, तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुतायो, कल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार जहै मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु।

0: संगत जी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान कर लेनी, सतगुरु जी कृपा करन बड़ी सोहनी बाणी साढ़े हिरदे विच वस जाए। तो संगत जी सतगुरां ने आप जी दे चरणां दी सेवा बख्शी है ते अज दसरियां दी विदाईगी है। आप जी ने असीस बख्शनी, सेवा करदियां तो होईयां भुल्लां बख्श लैणियां, अरदास करनी कि सतगुरु जी कीर्तन दी दात बख्शन, होईयां भुल्लां दी खिमा। प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह,
0: वाहेगुरु जी की फतेह। हुण आओ जो बाकी दे 12 छके हन इस स्थान ने बहुत ही प्यार वाले गुरु के कीर्तनी है, जिन्हां दे नाल दासां नूं सेवा करन दा अवसर मिलिया है। भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी चंडीगढ़ वाले, वह बाकी दे आसा की बार के छके आप जी नूं सरवण कराणगे। 12 छके उन्हां पासों बड़े प्यार सहित सरवण करो जी, होया भुल्लां दी खिमा। प्यार सहित फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टैल सन संग हेत कर्ण सुने काहू की निंदा सब ते जाने अपसको मंदा गुरप्रसाद बिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए भिन्न कर्म करत होवै नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन सगराचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानक ओ बैसनो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत कौ पावै सो पंडे जो मन प्रबुदै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सुखम मैं जानै अस्थूल चौह वर्णा